0: जूते के इन नोया के फ्यूचर प्लस पॉइंट टकाक आरडीबी यूथ प्लस विशेष प्रतिलाभ रसाक समगिंग यूथ कडम सेट वेन बैंकिंग पार्टनर आरडीबी यूथ प्लस की नुमा ओब विनुएन मा
1: Pierce Motor Company within Rajya Sevaka Upadapidana DPMC Rajya Pranama Amatanna Binduai Ekai Ekai Hatarai Hatsiyai Hayasiyaya
2: ඇසට ගියත් හවසට ගෙදර කිව්වට හවසට ගෙදර යන්නේක තමයි අමාරුම වැ

से समकी शांति उदिशा में उतुम पिरित सज्जायने कुट बताले पाणतुर गंगुल सिरि परम विशुद्धारामाधिपतिव वैडसेट अपत्वि बताल प्रवचन कीर्ति श्री सरबन्य विशारद पूज्यपाद मिगस्वे सोमरतन स्वामीन महासे विसिनी।